मुसमुस हाँसन चुरुट थुती करुणीलाई हेरी बसे की छे कान्छी नानी नया लुगा फेरी कोरके आँखा लाई हेर्छन् ला।

पछी है कस्तो रहे छ भिना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लाहुरे हर ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हर सलके को केना भूलचस लाहुरे दाई।

0: 네 가서
1: 빨리 전리 안 무슨
2: 엄마 엄마 졸졸졸
1: 락바 헬리페리 बच्चा देखिन कुकुर बिराल जस्तो झगडा परेछ
0: त्यसले नत्र मलाई पहिला
1: सौदा लगेर भित्रिन अन्त दोष के भएको
2: ओए इसाको त मसँग अम्बो
0: के
2: अन्त भोलि ड्राइभ पनि गाउदैनस्
0: आउदिन
2: जान्न
0: आउदिन आफै जा
2: साच्चै के आउदैनस्